0: नायका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी।

बिसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

ते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: दिल क्या है एक शीशा है, what a lovely track in the vocals of Asha Bhosle, Kishore Da and Shailendra Singh. This song was from the movie Lava, जिसमें थे of course the gorgeous Dimple Kapadia, Rajiv Kapoor and Raj Babbar played a negative character in this movie. I mean, it was a very nice and interesting movie. I recently saw this movie with my mum and काफ़ी मज़ा आया पिक्चर देखने का, बट आई अंडरस्टैंड कि मूवी डिड नॉट रियली डू वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस, बट इफ यू हैवंट वॉच दिस आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड. आई एम वीर इन फॉर काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: बॉलीवुड फ्लैशबैक विद काजल.
0: Yes, it's time for the Bollywood Flashback Quiz. And today I have a very interesting movie. It is one of the nicest, you know, very feel-good movie. So I'm going to play a dialogue and you've got to guess ki ye movie kaun si hai. So brace yourself because here is the dialogue. Okay, and here we go.
2: मक्कार फरेबी, खुदकशी का बहाना करके अपने इस नौटंकी वाले भाई के सहारे मुझे यहाँ बुलाया क्या?
3: मैं आपको नौटंकी वाला नजर आता हूँ.
2: खामोश, तुम क्या समझते हो कि मैं खुदकशी का सुन के तुमसे हमदर्दी कर बैठूंगी, तुम्हें चाहने लग जाऊंगी? अरे तुम पहाड़ से तो क्या आसमान से कूद के मर भी जाओगे ना, तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा.
4: अरे यार, तुम तो मेरा कचरा ही करते चले जा रही हो.
2: कचरा? अरे तुम खुद कचरा हो, बल्कि कचरा भी तुमसे अच्छा होता है. अगर घर में आईना है तो अपनी सूरत देखो, अगर नहीं है तो मैं पैसा देती हूँ, बाजार से खरीद कर आकर अपनी सूरत देखो. अपना हुलिया देखकर तुम खुद घर जाओगे. गंदे बदबूदार, महीनों से नहाया नहीं, खरी बातें हुई, डर लगता है, लगता है घोड़े के अस्तबल में से घुसकर आ गया हो. तुम्हें कोई लड़की चाहेगी, तुमसे कोई प्यार करेगी? अरे तुम तो कोई डराने की चीज हो, डराने की.
0: Well, guess किया होगा आपने ये movie कौन सी है. So message me, मुझे आपके messages का इंतजार रहेगा. Come on, send me your messages.
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.9 Indian rupees. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher daily when you send over £1,000 and a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
5: Leica Gold.
1: Leica Gold. Traffic and travel.
6: Good morning, this is Cameron McGarvey here. Now, the M11 southbound just before junction 4 for the North Circular, we've got delays, travel time there of around 15 minutes. M4 onto the elevated section, still slow eastbound from junction 3 for the A312 at Hayes to junction 2 for the A4 at Brentford. And then the M25 clockwise has been very heavy just before junction 15 for the M4, adding around 10 minutes to your journey there. Public transport, we've got cancellations and severe delays on the Circle Line this morning. And Southwestern Railway, due to some flooding, no service on the service between Fulwell and Shepperton this morning. That's your latest traffic and travel.
7: Do it for your wife, who told you to pick up bread, but instead you picked up Fred, your grandson, again. And now your daughter is calling because he missed football. That's the fourth time this month. You can wave his future career goodbye. If you don't do it for you, do it for your wife. And little Freddy.
8: Book a free test today at bootshearingcare.com and take advantage of our interest-free payment plans. Boots, with you, for life. T's and C's apply.
5: Yeah. Leica Gold. लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th-21st June वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
9: इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड दिस इज इंडियाज लाइनअप
10: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर हाई स्पीड एक्शन हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स बिल्कुल अनमिसेबल अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून बी देयर
9: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज देयर इज अ चांस
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
11: High Appreciation
12: in Dubai
13: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
14: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
13: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
14: गारंटेड
13: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
14: फोन 02085748410
13: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
15: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
16: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
15: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
16: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
15: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
16: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
15: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
16: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
17: હેરોલ્ડ ન્યુ વર્લ્ડ ઓફ ઇકો ફ્રેન્ડલી ડિસ્પોઝેબલ્સ ફોર રેસ્ટોરન્ટ્સ કેફેસ કેટરર્સ ફૂડ ટેકઅવેઝ એન્ડ ફૂડ ડિલિવરી સર્વિસીસ ઓડિયો Your free 2025 catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
18: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
19: कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकिट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
20: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 02089510111 or visit sonatours.co.uk.
1: On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza hosts a special on menopause featuring special guests.
21: So I've been navigating menopause on and off since January 2024 and it's happened suddenly. So I haven't had the kind of build up suddenly. So it's been a journey and now I'm navigating menopause without any HRT or anything, any medications.
1: Leica Extra is here.
3: Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: जी हाँ, समा तो सुहाना होगा ही, बिकॉज़ यू आर विद योर फिल्मी मुंडा वीर. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द मूवी घर घर की कहानी. वेल, इफ यू आर अ किशोर दा फैन, देन गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय एंड द 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th ऑफ जून एट द प्रिंस रीजन होटल, चिगवेल, एसेक्स. Tickets available at eventbrite.co.uk or call 0208-514-5400. Exclusive radio partner Leica Gold Radio.
1: Leica Gold.
2: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस. जी हाँ, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ लता जी. वन मोर ट्रैक दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर ऑन लाइक अ गोल्ड.
1: लाइक अ गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन.

मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटरगूं। दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को

0: हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का. काजल विल बी बैक टुमारो. एंड रहा मेरा सवाल तो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. वेल इट्स टाइम फॉर रवि शर्मा, ही इज गोना बी अप नेक्स्ट ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड.
1: Reminisce those classics on Like a Gold.

0: गुड मॉर्निंग। स्वागत है, खुशामदीद जी आयानु, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। पहले तो भाई अपने लवली वीर को धन्यवाद दें जो बड़ी खूबसूरती से जिम्मेदारी निभा रहे हैं काजल की। माय नेम इज रवि शर्मा, नाम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। मनोरंजन कार्यक्रम लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं, मतलब हम अब शुरू हुआ चाहते हैं। बहुत सारे काम करने हैं और एक खास काम जो बड़ा मुश्किल है, अगरचे काम मुश्किल है मगर ये काम करना है, किसी आगाज पे लाकर इसे अंजाम करना है। वो शायद मुझसे बेहतर हैं जिन्हें मालूम है इतना कि रुकना है कहाँ, जाकर कहाँ आराम करना है। जमाने से गिला कैसा कि ये तो होता आया है, मुझे बदनाम होना और उन्हें बदनाम करना है। बहुत कुछ आपसे कहना है, सब कुछ दिल में रखा है, बहुत सी खास बातें हैं जिन्हें अब आम करना है।
1: Let's return for the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is Leica.

अगरचे काम मुश्किल है मगर ये काम करना है, किसी आगाज पे लाकर इसे अंजाम करना है।

0: कुछ लोग इस कला में बड़े माहिर होते हैं भाई, नाम इस्तेमाल करने की कला में। मुझे याद है हमारे एक परिचित है, वो जिस भी दुकान से जाके कभी कोई बड़ा सौदा खरीदते हैं तो मेरा नाम इस्तेमाल करके डिस्काउंट मांगते हैं, तेरा नाम लेके। और एक ने तो गजब कर दिया साहब, एक ने, वैसे तो ये कृपा है भगवान की कि भाई दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो या और भी जो कारोबारी लोग हैं, भरोसा करते हैं मुझ पर, भरोसा करते हैं मेरे नाम पर, भरोसा करते हैं मेरे काम पर, भरोसा करते हैं। लेकिन ये काम कभी कभी जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। अब एक ज्वेलर्स की दुकान से एक खूबसूरत कन्या ज्वेलरी ले गई खरीद के, और वो चेक देने लगी। उन्होंने कहा जी हम चेक नहीं लेते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड है तो वो दे दो, आजकल चेक प्रचलन में नहीं है, और या कैश पेमेंट कीजिए। तो कहती है कि आप अभी चेक रख लें, मैं आऊँगी और आपको कैश दे जाऊँगी या मैं अपना कार्ड लेके आऊँगी और ये चेक वापस ले जाऊँगी। बोले जी हम आपको जानते नहीं। तो कहने लगे मुझे नहीं जानते, रवि शर्मा को तो जानते हैं ना। चल गया साहब, रवि शर्मा का नाम चल गया, तेरा नाम लेके, तेरा नाम लेके वो ज्वेलरी ले गई। और कितने दिनों बाद भाई उस ज्वेलर का फ़ोन आया कि साहब वो चेक अभी तक पड़ा है लेकिन पेमेंट नहीं आई, हम ये उनको कहा था कि चेक नहीं लेंगे, क्रेडिट कार्ड दीजिए या कैश दीजिए। अरे ये तो छोड़ो साहब, खैर उनसे संपर्क किया, वो बात ठीक ठाक हो गई। एक ट्रैवल एजेंट से बंदा मेरे नाम से टिकट लेके गया। मज़े की बात ये है कि साउथ होल ट्रैवल से, साउथ होल ट्रैवल वाले इतना भरोसा करते हैं मुझ पर भाई, ईश्वर उनकी लंबी आयु करे। कुलजिंदर जी जो हैं, जो सीईओ हैं इस साउथ होल ट्रैवल के, जो मालिक हैं, अब साहब गाड़ी में बैठे मेरे साथ ही हमारे उस मित्र ने मुझसे ही फ़ोन करवाया, ज़रा उनको कह दो कि मुझे इंतज़ार ना करना पड़े, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे जाते ही टिकट इश्यू कर दें जल्दी। तो मैंने कह दिया भाई थोड़ा जल्दी में है भाई, इनको एयरपोर्ट जाना है टिकट लेके सीधा, तो इनको वेट मत कराना, टिकट दे देना जल्दी, करा देना इशू। अरे साहब उन्होंने टिकट तो इशू करा दिए, जब पैसे मांगे तो कहने लगा आपको शर्मा जी का फ़ोन नहीं आया। उन्होंने टिकट दे दिए, पैसे ले लिए। यकीन मानिए भाई, महीनों बाद, नियरली साल के बाद, बड़े संकोच के साथ उन्होंने, उनके स्टाफ ने फ़ोन किया कि जी वो दो टिकट्स गए हुए थे, एयर टिकट्स आपके यहाँ, पेमेंट नहीं आई अभी तक। मैंने कहा भाई कब की इतनी पुरानी बात, बोले हाँ आपका फ़ोन आया था ना। और अभी अभी जो मेरा फ़ोन हैक हुआ, मेरा मतलब व्हाट्सएप हैक हुआ फ़ोन से, देखिए साहब वो मेरी तरफ से मैसेज भेज रहे हैं सब जानने वालों को, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी उन्होंने मैसेज भेजा। और उनको कहते हैं कि भाई मैं, यानी रवि शर्मा, खतरे में है, मैं परेशानी में हूँ, रात को मैसेज आता है और फौरन इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो इस अकाउंट में। अब पत्नी सोचती है ये तो घर पे है, बोली देखो जी ये आया, मैसेज आया है कि आप मुसीबत में हैं, आप तो घर पे हैं। मैंने कहा घर पर ही तो मुसीबत में हूँ। खैर साहब आजकल ये फ्रॉड चला हुआ है, लोग सयाने हैं जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत प्यार करने वाला हमारा एक दोस्त, 500 पाउंड ट्रांसफ़र कर दिए उसने, और मुझे इतना दुख हो रहा है उसका कि भाई वो कहता है साहब आप अगर सचमुच परेशान होते तो मैं तो ये सहन नहीं कर सकता था। क्या कहो भाई, कुर्बान जाऊँ ऐसे दोस्तों पर, ऐसे शुभ चिंतकों पर, लेकिन इस नुकसान के लिए मुझे बहुत दुख हुआ। और वो तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और पता नहीं कौन से देश में हैं, कहाँ हैं, 500 पाउंड उनके लिए कितने बनते होंगे। खैर साहब जमाना खराब है, संभल के मेरा नाम लेके। बैक टू बैक संगीत सुनवाते हम आ गए इस मोड़ पर, आइए देखते हैं पाउंड का रेट क्या चल रहा है।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज हमारे हेडफोन्स बहुत ही नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। खैर साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया याद दिला रहे हैं भाई, रेट अब भी अच्छा चल रहा है, पैसे भिजवाने हैं तो मौके का फायदा उठाइए। क्या है रेट? वेल टुडे दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड 128.45 रुपीज, 128 रुपये और 45 पैसे का रेट चल रहा है। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जा करके पैसे ट्रांसफ़र कराइए। और जानते हैं अगर आप 1,000 पाउंड से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो भाई देर इज़ ए चांस टू विन 75 पाउंड वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 पाउंड्स। और 2,000 से ज़्यादा भेजते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीतने का चांस है। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड।

0: Set Kofood containers. Total satisfaction.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
5: T's and C's apply.
6: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
7: बोले तू क्या कर रहा है रे
8: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
7: ये तो बताओ कोई पता चला
9: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
7: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208514540 बुक ऑनलाइन एट Eventbrite
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
11: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
12: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
13: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
15: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
16: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
15: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well-planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
18: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: स्वागत है आपका संगीत की दुनिया में। और भाई आज तो बुधवार है, हंसी के ठहाकों के संसार में।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: लड़की साइकिल वाली महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आपने ये गीत सुना। और भाई साइकिल की याद आई, किसी जमाने में साइकिल जो है बड़ा लग्जरी वाहन होता था, अब तो अब भी है भाई, आपको यकीन नहीं आएगा कई कई हजार पाउंड की साइकिल्स मिलती हैं आजकल, नॉर्मल साइकिल्स, वो इलेक्ट्रिक वाली नहीं। तो साहब लेकिन अब जो है वो लोग एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं और भी कई कार्यों के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता है। जहां भाई गाड़ी लेके जाएं तो वहां आप पार्किंग के लिए पैसे चुकाएं, कंजेशन चार्ज और पता नहीं कितने तरह के चार्जेज जुड़ गए हैं, साइकिल सस्ता है। और आज तो भाई वर्ल्ड साइकिल डे है, डू यू नो दैट, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून पिछले कई सालों से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई यूनाइटेड नेशंस की ओर से। जिक्र करेंगे चिंतन में कि साइकिल कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। फिलहाल दिस वॉज सॉन्ग ब्रॉट टू यू बाय फील गुड ट्रैक
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: 10:30 बज चुके जी। हाँ साहब, वो खबरों का वक्त हो गया है और खबर आ रही है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी है भाई। अभी थोड़ी देर पहले कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। इसके अलावा और भी आइए देखते हैं क्या क्या है आज की खबरों में शामिल। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। कुवैत इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ है, कई लोग जख्मी हुए हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मिला है नया चीफ, प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है। भारत में सीबीएसई के नए चेयरपर्सन का ऐलान हुआ है भाई। शिक्षा के क्षेत्र में ये भी एक भाई बड़ी खबर चल रही है आजकल। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत चल रही है, नतीजा देखते हैं। और अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह खुलने के बाद भी ईरान पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं नेपाल और भारत के संबंधों से। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी मोदी जी ने एक्स पर दी है। प्राइम मिनिस्टर ने लिखा कि नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ रवि लामिछाने से मिलकर खुशी हुई, साथ मिलकर साझा और प्रोस्परस भविष्य के लिए करीबी सहयोग से काम करने की उनकी इच्छा का मैं स्वागत करता हूं और उनसे पूरी तरह सहमत हूं। अभी अभी खबर आ रही है रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में एक बस पर ड्रोन हमला हुआ है, 7 लोग मारे गए हैं। ये आज बुधवार की सुबह थोड़ी देर पहले ही हादसा हुआ है। 11 लोगों के जख्मी होने और 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनेत्स के इलाके में रूस के समर्थित नेता डेनिस पुशलिन ने बताया है कि आज सुबह ये अटैक हुआ, बस मॉस्को से सिम्फरोपोल क्राइमिया जा रही थी। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि रात भर में 350 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए हैं। भारत से आने वाली खबरों में वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी से जुड़ी सभी कमेटियां और उससे जुड़े सभी संगठन भंग कर दिए गए हैं। भाई ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली ये टीएमसी पार्टी टूट की आशंका के बीच ये ऐलान उन्हीं के द्वारा किया गया है कि सभी संगठन भंग कर दिए गए हैं। गहन विचार के बाद ये तय किया गया है कि पश्चिमी बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस खत्म किए जा रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि केंद्रीय बैंक ने अपना सोना बेचा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बयान में साफ किया कि उसके पास मौजूद सोने के भंडार में कोई कमी नहीं आई है, ये सिक्योर है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज करके बताया कि सोने का फिजिकल स्टॉक हर महीने के बुलेटिन में दिया जाता है। ताजा बुलेटिन आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं। कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी ने आज बताया है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई लोग जख्मी हो गए हैं। इस हमले के बाद उड़ानों को रोक दिया गया, फ्लाइट्स रोक दी गई हैं और उन्हें दूसरे एयरपोर्ट पर भेजा गया है यात्रियों को। रिपोर्ट में कुवैत सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से बताया गया है कि हमला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की T1 टर्मिनल 1 बिल्डिंग पर किया गया है और फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया जा रहा है। रोमन गोफमैन ने कल मंगलवार को इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि रोमन गोफमैन को मोसाद का अगला डायरेक्टर अपॉइंट करने पर उन्हें बहुत प्राउड है। नेतन्याहू ने रोमन गोफमैन के बारे में एक और पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि रोमन 14 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ बेलारूस से इसराइल आए थे। नॉर्वे चेस 2026 में भारत के प्रज्ञानानंद ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हरा दिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने कल मंगलवार को दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को उनके ही घर में फिर से पराजित किया है, हराया है। नॉर्वे चेस 2026 में क्लासिकल गेम में कार्लसन को हराने के बाद प्रज्ञानानंद ने इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार आज शाम को कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि लोक भवन के ग्लास हाउस में राज्यपाल थावरचंद गहलोत शाम 4 बजे भारतीय समय के अनुसार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे और यह कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अब पहले से ज्यादा एक्टिव हैं। मार्को रूबियो ने कल सीनेट की विदेशी मामलों की समिति को बताया कि मुझे लगता है कि कुछ संकेत हैं कि मुज्तबा खामनेई किसी स्तर पर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ईरानी टीवी के मुताबिक मुज्तबा खामनेई को लंबे समय से जनता के बीच नहीं देखा गया है। वो अमेरिका और इसराइल के पहले हमले में जख्मी हुए थे और उसी हमले में उनके पिता अली खामनेई की मौत भी हो गई थी। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकान ने मई की शुरुआत में दावा किया था कि उन्होंने मुज्तबा खामनेई से मुलाकात की है, लेकिन लोग अटकलें लगा रहे हैं भाई उन्हें ना देखा गया है ना कोई टीवी पर उनकी कोई स्टेटमेंट आई है। तो इससे ये सोचा जा रहा है कि कहीं वो भी अपने पिता के साथ मारे तो नहीं गए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। उन्होंने दावा किया था कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत बंद हो गई है, लेकिन अब कल मंगलवार देर रात को उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत कहाँ जाएगी ये कोई नहीं जानता, नतीजा क्या निकलेगा कुछ भी कहना मुश्किल है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर। लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों का खजाना लुटाया जा रहा है। अब आपको सुनवाया जा रहा है बॉम्बे गर्ल अलीशा चिनॉय की आवाज में ये गीत।

इम्तिहान तो मेरा है, संकट में जान है, क्योंकि भाई समाचारों का समय हुआ जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद, और कितने संदेश और है जो प्रोग्राम में शामिल करने हैं उससे पहले। Currency updates are sponsored by Lemfi Mobile.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क है, आप लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं मनोरंजन विद रवि शर्मा। यस दैट्स माय नेम, और मैं आपकी सेवा में बहनों भाइयों एक बजे तक, दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं आइजलवर्थ से श्री बाबूराम जी का भेजा आलेख। भाई बाबूराम जी एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपने आप को बहुत युवा मानते हैं और लोग भी उन्हें युवा के रूप में पहचानते हैं, पर उम्र उनकी 90 के करीब है। पर सुबह जब उन्हें उनके पड़ोसी, उनके यार दोस्त पार्क में साइकिल चलाते हुए देखते हैं तो भाई लगता है कि किसी नौजवान को देख रहे हैं। हल्के फुलके, दुबले पतले, एकदम स्वस्थ मस्त, प्रसन्न चित, खुश चेहरे पर मुस्कुराहट। और जब उनसे पूछते हैं कि बाबूराम जी कितनी उम्र हो गई आपको, तो रिटायर्ड हुए कई साल हो चुके हैं, बोले मैं अपने आप को जितने का मानता हूं बस उतनी ही समझो, और मैं अपने आप को 60 से नीचे ही मानता हूं, जबकि वो 90 के करीब हैं। बाबूराम जी कहते हैं कि ये साइकिल है ना, ये मेरी टीचर है, मेरी पीटी टीचर, मेरी मोटिवेटर, मेरी सहयोगी, मुझे स्वस्थ रखती है, मस्त रखती है। बहन भाइयों, इसलिए मैं बाबूराम जी की साइकिल का जिक्र कर रहा हूं कि आज वर्ल्ड साइकिल डे है। सुना है कि नहीं, बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे। भाई ये पिछले कुछ बरस से हर साल मनाया जा रहा है, 3 जून को होता है। लोगों के हृदय में, दिल में साइकिल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, साइकिल कितनी उपयोगी है ये याद दिलाने के लिए भाई ये दिन साल में एक दिन मनाया जाता है। मुझे याद है भाई मेरी जिंदगी में साइकिल एक लग्जरी बन करके, मेरी जिंदगी में कहा, बड़े भाई के लिए आई थी साइकिल घर में, और बड़े भाई की ये इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, साइकिल मेरे लिए है। और एक दिन उनकी बिना इजाजत के मैंने वो साइकिल थोड़ी चला ली तो अच्छी खासी पिटाई हुई थी मेरी भाई के हाथों। वो भाई जो अपनी हर चीज मुझसे शेयर करते थे, साइकिल नहीं शेयर करना चाहते थे। लग्जरी होती थी साहब, किसी किसी घर में होती थी, लेकिन भाई की मार खा के दिल से जो दुआएं निकली, हुआ ये कि वो साइकिल चोरी हो गई। भैया लाइब्रेरी में जाते थे पढ़ने के लिए, बाहर साइकिल खड़ी की, वापस आए तो गायब। कितना दुख हुआ था। भाई ऐसा लगता था जैसे कि बहुत बड़ी पूंजी हमारी लुट गई। किसी किसी के लिए भाई वही दौलत होती थी उन दिनों में, लेकिन आजकल तो साइकिलें, हम कभी सड़क से गुजरते हैं तो इधर उधर लेटी हुई मिलती हैं साइकिलें, जैसे डंप कर दी गई हैं। सरकार साइकिल चलाने के लिए भाई लोगों को एनकरेज कर रही है, लेकिन साइकिलों की दुर्दशा देखें, ऐसे फैली होती है सड़क में जैसे लावारिस पड़ी हूँ, जैसे लेट के आराम कर रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई वो सहायक कम और गाड़ियों के रास्ते में रुकावट ज़्यादा बन रही हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रैक भी बनाए गए हैं, पर ऐसा लगता है कि व्यवस्था की ज़रूरत है थोड़ी। वर्ल्ड साइकिल डे याद दिला रहा है हमें, साइकिल का इस्तेमाल कई तरह से फ़ायदेमंद है। अब साहब हम एक व्यक्ति का जिक्र करना चाहते हैं, 18,000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं श्रीधर बेम्बू। बड़ी प्रेरक कहानी उनकी भाई, वो जोहो कॉरपोरेशन कंपनी के मालिक भी हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, और वो चाहे तो हवाई जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या खरीदा, साइकिल।
अब बहन भाइयों आप सोचेंगे कि जो व्यक्ति एक नहीं कई हवाई जहाज खरीद सकता है, जिसके दफ्तर जो है दुनिया के कई देशों में है, और अमेरिका की वो जो सिलिकॉन वैली है वहां को छोड़ करके तमिलनाडु के एक गांव में आकर के उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है, और वहां से अपने कई कर्मचारियों को भी साथ लेके आया कि अगर वहां काम करना पसंद करेंगे तमिलनाडु के उस गांव में, तो जो हो कॉरपोरेशन कंपनी के मालिक श्रीधर प्रेरित करते हैं कि मैं साइकिल इसलिए चलाता हूं, एक तो भाई ईंधन की बचत, और फिर वो जो पॉल्यूशन फैलाते हैं ईंधन के जलने से दूसरे वाहन, साइकिल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर मैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, बहुत सारे लोग जिम में जाकर के साइकिलिंग करते हैं ना, श्रीधर वेम्बू कहते हैं साइकिल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो बहनों भाइयों आप साइकिल चलाते हैं क्या? आज वर्ल्ड साइकिल डे पर एक संकल्प लीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए, ईंधन की बचत के लिए साइकिल चलाइए। भारत में कहते हैं साइकिल भाई 30s में आ गई थी, हमने तो ये भी सुना था कि नेहरू जी के पिताजी ने उन्हें साइकिल खरीद के दी थी, लेकिन उससे भी पहले 6-7-9 जवानों ने कई हजार मील का दौरा किया था साइकिल पे। और हमारे यहाँ एक साइकिल बाबा आए थे हरियाणा से, वो विश्व भ्रमण पर निकले थे दुनिया की सैर करने के लिए साइकिल पर। साइकिल भाई भले ही टूटा फूटा होता था उन दोनों में, लेकिन बहुत बड़ी सुविधा होता था साइकिल बहुत सारे घरों में परिवारों में। वर्ल्ड साइकिल डे पर आपको शुभकामनाएं, साइकिल का इस्तेमाल कीजिए।

मेरा साइकिल चोरी होया। अरे मूर्ख, साइकिल लेकर गाड़ी देगा तू क्या जाने मोया। मोया मतलब

0: साइकिल लेके गाड़ी देगा भाई वो, और गाड़ी से भी और सुपर गाड़ी देगा। वैसे बात आपको बता दे कि वो जमाना था, कौन सा साल था वो भाई, उस साल साइकिल चोरी हुआ तो बहुत दुख हुआ था, लेकिन सचमुच उसने साइकिल ले करके और गाड़ी दी बाद में। पहले तो मैंने वो स्कूटर होता है ना वेस्पा का, वो खरीदा था। मैं मॉरिशस में शो करके वापस गया, फॉरेन करेंसी से स्कूटर जल्दी मिलता था उन दिनों भारत में, तो जब स्कूटर खरीदा और भाई जब मैं स्कूटर पे बैठ करके अपने कॉलेज जाता था तो एक अलग से रोप पड़ता था, लेकिन उसके बाद गाड़ी भी आई और वो दिन याद आते हैं। वर्ल्ड साइकिल डे पर हम उस सेकंड हैंड साइकिल को याद करते हैं जो भाई पिताजी ने खरीद के दिया था, जो चोरी हो गया था। लेकिन बाबूराम शर्मा जी अब भी साइकिल पर चलते हैं, हालांकि उनके पास भी गाड़ियों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, रिटायर हैं। बहुत सारे लोग साइकिल की सवारी सेहत के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वेल इट्स अ सिंबल ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड इट कन्वेज द पॉजिटिव मैसेज टू फोस्टर। वर्ल्ड साइकिल डे इज नाउ बीइंग एसोसिएटेड विद प्रमोटिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर दोज विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज एज वेल। साइकिल चलाना भाई बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाना भी है। गुरदास मान की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। वर्ल्ड साइकिल डे पर आज 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है, जागरूकता फैलाइए, साइकिल चलाइए और चलवाइए, साइकिल रखिए घर में छोटे मोटे कामों के लिए, आस पड़ोस के भाई शॉप्स पर जाना हो, इधर उधर किसी से मिलने जाना हो, हेलमेट पहन करके सुरक्षित रूप से साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। यह था आज का चिंतन।
1: चिंतन चिंतन
0: आइजलवर्थ से श्री बाबूराम शर्मा जी का आलेख और गीत सुनवाया गुरदास मान की आवाज में। एक बार फिर से आपको वर्ल्ड साइकिल डे की शुभकामनाएं। इट्स अ इंटरनेशनल डे वर्ल्ड वाइड बीइंग सेलिब्रेटेड। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 8 बरस पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। और उसके बाद भैया मैंने देखा कि गांधी जी को साइकिल पर बैठे उनका एक फोटो जारी हुआ है, मदर टेरेसा को साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां साइकिल से जुड़ी रही हैं। आज का चिंतन, आज का विचार समाप्त करते हैं याद दिलाते हुए कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल होता है।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और लीजिए साहब आपको बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 पाउंड के बदले आज दे रहे हैं 128.25 रुपीज़ एंड दैट इज़ मैक्सिमम फॉर 1 पाउंड। पर इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि जून के महीने में अगर आप पैसे भिजवाते बिफोर एंड ऑफ जून, तो इसके साथ एक और फायदा है कि यू कुड बी विनर ऑफ 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, ऑल्सो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: They offer savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
1: Like a gold.
3: Like a gold.

0: लता मंगेशकर की आवाज में बैक टू बैक संगीत के तहत। भाई ये गीत आपने सुना, इससे पहले सुना था फिल्म तराना का गीत, और वो गीत गाया था उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने। शैलेंद्र सिंह भाई, राज कपूर साहब ने जो नए गायक कलाकार इंट्रोड्यूस किए थे उनमें शैलेंद्र सिंह का नाम भी शामिल था। कल राज साहब की पुण्यतिथि थी और मेरे पास उनकी आवाज़ में एक रिकॉर्डिंग थी, स्टेटमेंट थी उनकी, लेकिन साहब उसे मैं शामिल नहीं कर सका कल के प्रोग्राम में, पर वो जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का बखान कर रही थी। और भाई वो उनका क्या कहते हैं, अपने नरेंद्र चंचल की भी तो वही लाए थे बॉबी फिल्म में, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। संगीत के बड़े पारखी थे राज साहब, और एक से बढ़ के एक गीत भाई उनकी फिल्मों के हिट होते थे। तो दो गीत हमने सुनवाए, और ये गीत तो फिल्म आशा का, आई थिंक ये रीना रॉय पर पिक्चराइज हुआ था शायद, और दैट वाज इन 1980s, वो जमाना था। मुझे याद है कि कुछ हिस्से इस फिल्म के आशा के मॉरिशस में पिक्चराइज हुए थे, और मैं 1980s में मॉरिशस में था, शो करने के लिए गया था भाई, तो थिएटर किया, दो पैसे वहाँ से भी कमाए, लेकिन उसके बाद फिर विदेशों के कार्यक्रम काफ़ी मिलने लगे, और उसी चक्कर में फिर यहाँ का जब दौरा हुआ तो ब्रिटेन आना हुआ। सखार साहब, बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हम इस मोड पर आ गए हैं कि आपको एक बार एक और गीत सुनवाएं रफ़ी साहब की आवाज़ में, और याद दिलाएं कि माय नेम इज़ रवि शर्मा, नाम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। कुछ लोग चाय का कप भिजवा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। काजल नहीं है ना, तो आप जी जला रहे हैं मेरा, ठीक है, अल्लाह देखेगा। अर्जुन जी, ये जो चाय आपने भिजवाई है ना, वो तस्वीर में, आजकल क्या है कि सब कुछ जो है वो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हो रहा है, तो चाय का कप बड़ी खूबसूरत चाय है भाई। आप चाय का जिक्र अगले घंटे में करेंगे, पहले उसके लिए मैं कोई गीत ढूंढ लेता हूँ। लेकिन थैंक यू वेरी मच विजय जी, आपका संदेश मिला, कहते हैं साइकिल के साथ अपना भी बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहा है, मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छा भाई, गर्व कर सकती हैं आप उस पर। देशराज बैसन साहब कहते हैं कि साइकिल के बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास भी, साइकिल कहीं डंडे वाली तो कहीं बिना डंडे वाली, उसको लेडीज साइकिल कहते थे हम लोग। एक घंटी, कैरियर, सुंदर सी टोकरी लगी साइकिल, हो सकता है आपका बचपन इसकी सवारी के साथ बीता हो, बीता है साहब, लेकिन लेडीज साइकिल अब हमारी किस्मत में नहीं थी। वो कहते हैं भाई वो लेडी साइकिल चलाने के लिए आपको लेडी बनना पड़ेगा, हालांकि हम तो तैयार थे पर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने बताया था ना आपको, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स हॉस्टल थे ना, वो काफ़ी दूर थे बॉयज़ हॉस्टल से। बताओ, इंसान इंसान के बीच दूरी, मानव मानव के बीच फासला, कहाँ बॉयज़ हॉस्टल कहाँ गर्ल्स हॉस्टल, और उधर लड़कों का जाना मना था। दरवाजे पर, हॉस्टल के गेट पर चौकीदार खड़ा रहता था, एक ही आदमी था जिसे कोई नहीं रोकता था। मैं जब कभी उधर जाता गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, तो लड़कियाँ फुसफुसाहट में बात करती, हे देख देख कोई लड़का आ रहा है, देख हमारे हॉस्टल की तरफ लड़का आ रहा है। दूसरी कहती है, छोड़ ना लड़का थोड़ा, ये तो रवि शर्मा है। मुझे लड़कों में काउंट ही नहीं करती थी।
1: ये है लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं, कहीं भूल से ये ना समझ बैठो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, करता हूं तो करता हूं, इसमें क्या है। Oh, no.

0: यही तो कारण है कि भाई मैं किसी के घर पर चाय के लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि क्या पता क्या जाल फैलाया हो भाई।
1: मुझे चाय पे बुलाया,
0: चाय पे बुलाया है, ये चाय पिला करके ही फंसाती है भाई। गीत सुनवाते हुए मुझे याद आ रही है फिल्म, फिल्म का नाम था सौतन, 1983 में आई थी, लगता नहीं कि कितने बरस हो गए, 43 इयर्स। सौतन फिल्म, राजेश खन्ना, टीना मुनीम और कौन कौन थे इसमें भाई, पद्मिनी कोल्हापुरे भी थी, श्रीराम लागू, प्रेम चोपड़ा, प्राण, इतनी बड़ी स्टार कास्ट भाई इसमें। वैसे ये फिल्म उस जमाने में हिट रही थी, पर उससे भी ज्यादा हिट रही थी टीना मुनीम, और टीना मुनीम के वो, हाँ जानते हैं किससे शादी की उन्होंने, अनिल अंबानी से। अरे साहब इतने पैसे वाला आदमी, उससे तो मैं भी शादी करने को तैयार था। लेकिन टीना मुनीम से विवाह के बाद अनिल अंबानी वो मुकेश अंबानी जैसे तो नहीं रहे, पर भाई 43 इयर्स बिफोर सुपर हिट फिल्म सौतन का गीत सुनवाते हुए हमें टीना मुनीम की खूबसूरती और भाई फिल्म की कामयाबी सब याद आ रही है, और याद आ रहे हैं उसके गीत भी एक से बढ़ के एक। शादी से सभी डरते हैं साहब, डरते तो हम भी थे पर क्या करें, फंस गए। सौतन फिल्म का गीत, और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म परवरिश, बैक टू बैक संगीत के तहत।

0: वो महान गीतकार हैं जिनके गीत यादगार हैं और इनसे मिलने को दिल बेकरार। अभी मत करना भाई, वो ऊपर जा चुके हैं, वहां जाके मिलेंगे इंदीवर साहब यानी श्यामलाल बाबू राय। ये उनका असली नाम, क्या गीत लिखे हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच्चा झूठा का गीत, समझौता गमों से कर लो और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, एक तू ना मिला हिमालय की गोद में। और साहब कितने ऐसे गीत हैं जो सुपरहिट गीत हैं और सभी संगीतकारों के साथ इन्होंने अपनी कलम का सहयोग दिया। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, सरस्वती चंद्र कसमे वादे प्यार वफा सब उपकार, हर खुशी हो वहां तू जहां भी रहे, ये भी उपकार, और भाई वक्त करता जो वफा, कितने ही गाने आप अब तो ये सप्ताह तो उनके खूब गीत गूंजेंगे। इंदीवर साहब को सलाम करते हुए भाई उनका कलाम, ये गीत हमने आपको सुनवाया और भी आप सुनेंगे। साजन मेरा उस पार है, गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गीत, लता जी और सखियों की आवाजों में था।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: हाय अल्लाह कहा जाए साइकिल वाले। भाई एक साइकिल वाले की टक्कर लग गई, खूबसूरत महिला के साथ जाके वो टकराए तो वो चिल्लाई,
1: शर्म नहीं आती इतनी बड़ी बड़ी मूछें लेकर के घूम रहे हो, साइकिल मार दी।
0: साहब कहते हैं, मैडम मेरी मूछा मैं के ब्रेक लाग रही है।

0: हाय अल्लाह जाएं कहाँ दिल वाले। वो कहती है बार में जाओ। अरे बार में नहीं भाई, वो कह रही थी भाड़ में जाओ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और साहब एक सूचना ये भी आप तक पहुंचाते हैं कि भाई द लेजेंडरी हरिहरन रिटर्न्स टू द यूके फॉर सोल इंडिया एट रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन। 4 जुलाई को उनकी परफॉर्मेंस, उनका प्रोग्राम है। और भाई टिकट्स के लिए आप southbankcentre.co.uk से संपर्क कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इज लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: और इसी बीच हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश भाई साइकिल के विषय में आ रहे हैं। ये किसी ने लिखा है कि चंडीगढ़ में हमारे परिवार के एक वो व्यक्ति हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला के गए। बधाइयां भाई। भाई कन्याकुमारी तक हम भी जाने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीर से नहीं, वह कन्याकुमारी के आसपास से कहीं से। हमारे बैसन साहब कहते हैं 200 साल पुराना इतिहास है साइकिल का। साइकिल पर सवारी की हमने भी बहुत किया भाई, लेकिन अपनी पर नहीं, अपनी साइकिल। उन दिनों हम साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारी क्लास में एक लड़का था पैसे वाला भाई। पैसा बहुत था लेकिन पढ़ाई लिखाई में पैदल था वो। और साहब अपन तो होशियार होता था, फर्स्ट आते आते बचा था मैट्रिक में मैं। तो साहब वो मुझे इसलिए साइकिल पे बिठा के लेके जाता था कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करता था। और भाई मैं तो मैट्रिक पास करके आगे निकल गया, लेकिन सुना कि 3-4 साल तक वो उसी क्लास में रहा था। कहता रहा आजा बैजा मेरी साइकिल पे। मैंने कहा भाई मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ अब।

बैठी थी आराम से, मैं छत पे गई कुछ काम से, मैं सीढ़ी पे था वो चोर खड़ा, दिल के अंदर था शोर बड़ा, बाहर गली में

0: to gold. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: मर गई मर गई नी मैं वहीं पे मर गई।
2: अरे कैसे मर गई?
1: कैसे मर गई? अरे ऐसे मर गई।
3: परा जाके मराई थे ना मर।

कहीं कहीं पे मर गई, कभी यहीं पे मर गई, कभी वहीं पे मर गई, ये मरती रहती है, किस्तों में मरती है, महीने में कई बार मरती है।

आशा भोसले, गुरचरण कौर और साथियों की आवाजों में, सखियों की आवाजों में। भाई ये गीत, मस्ती भरा गीत किसके नाम करें भाई? शेखर साहब एक तो आपके नाम कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया पिक्चर बना के भेजते हैं आप, और दूसरा भाई

वो सारे हमारे चिंतन के श्रोता जिन्होंने बहुत सारी प्रशंसा लिख के भेजी है आज के वर्ल्ड साइकिल डे के भाई चिंतन पर, मर गई गई काम से। और इसके अलावा भाई हमारे कुछ लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे। वैसे आज सारिका फिल्म अभिनेत्री अपना जन्मदिन मना रही हैं, और याद है ना फिल्में उनकी, वो गीत गाता चल, वैसे वो इस तरह की फिल्मों में भाई वो हीरोइन थी। और करुणा निधि एक पॉलिटिशियन हैं, उनका भी आज जन्मदिन पड़ता, 1924 में जन्मे थे, अब नहीं हैं दुनिया में। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस साहब भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, उनका भी जन्मदिन आज पड़ता है। और साहब आज जन्मदिन मनाने वालों में हरियाणा के हमारे एक रणदीप सुरजेवाला हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और पुराने लीडर इनके पिताश्री रहे थे, तो वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बेटे रणदीप सुरजेवाला काफ़ी प्रतिष्ठित राजनेता हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से, तो इनका भी आज जन्मदिन है। मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, 1967 में जन्मे थे रणदीप सुरजेवाला। और भाई आज आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज पुण्यतिथि है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी की, 2011 में उनका निधन हुआ था, और साहब उन्हें भी याद कर लें। और भाई जन्मदिन मनाने वालों का या आपकी शादी की सालगिरह या कोई और उत्सव आपके घर परिवार में है तो बधाई संदेश दोहराते हुए इजाज़त लेता है रवि शर्मा। बाली भाई का इंतज़ार कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए।

0: ओह वेल, सडनली गाना खत्म हो गया, पता भी नहीं चला मुझे। मैं हूँ पाली ब्रह्मभट्ट, आपकी खिदमत में ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स 1035 मीडियम वेव डीएबी प्लस एलेक्सा गूगल होम एंड लाइका गोल्ड डॉट कॉम एंड on Leica Radio Midlands. It's the 331st day of Leica Radio Midlands. In this week number 23, it's the 154th day of 2026 and 211 days left, and it's 263rd day of Leica Gold in the year 4. Chautha saal chal raha hai. It used to be Dil Se Radio until 13th of September 2022. It's the 771st day of Leica Greater Manchester. Ek se char baje tak aap saath nibhana. And uske baad Sandy Shah will come on Drive Time. And on Leica Radio Midlands is gonna be Raj Patan. Ab do gaane aapne jo sune, unusual start for me. Lekin maine ye gaane isliye sunaye because we are remembering the yesteryear's famous filmmaker of the Indian cinema, Mohan Kumar. Kaun? I knew. Aap aise hi bolenge Mohan Kumar. Kyunki aapne jitni bhi filmein dekhi hai, main agar filmon ke naam loon to aap bole wah wah wah wah. Filmon ke naam loon bole wah wah wah wah. फिल्म का नाम लूंगा वाह वाह वाह वाह, लेकिन आपको नहीं पता कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, या तो ही वॉज ऑल्सो अ डायलॉग राइटर, ही वॉज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ही वॉज ऑल्सो अ स्क्रीन प्ले राइटर, एंड ही ऑल्सो, आई टेल यू, ही ऑल्सो वॉज एन एक्टर. इतना बड़ा आदमी और हमें मालूम ही नहीं है इनके बारे में, बिकॉज टुडे हैपन्स टू बी हिज 92nd बर्थ एनिवर्सरी. जी हाँ, बर्थ एनिवर्सरी माने के 1st of June 1934 में सियालकोट में जन्मे हुए मोहन कुमार पास्ड अवे ऑन 10th of November 2017 एट द एज ऑफ 83. ऑफ कोर्स जब पार्टीशन हुआ तो क्या होता है, यस, पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है. सो पाकिस्तान छोड़ के आफ्टर पार्टीशन केम ओवर टू बॉम्बे एंड ही सेटल देयर. तब बॉम्बे था, अब है मुंबई. अब इनकी जो फिल्मी कहानी अगर मैं कहूँ तो इन्होंने डेब्यू किया था, सबसे पहला डायरेक्शन इन्होंने जो किया था फिल्म का, दैट हैपन टू बी आस का पंछी. आप बोलेंगे वाह वाह, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला, रिमेंबर? यस, ये फिल्म प्रोड्यूस की थी जे ओम प्रकाश ने. अब जे ओम प्रकाश एंड मोहन कुमार हैपन टू बी ब्रदर्स इन लॉ. कैसे? बिकॉज जे ओम प्रकाश की बीवी और मोहन कुमार की बीवी आर सिस्टर्स, देवर सिस्टर्स, सो ब्रदर्स इन लॉ हुए. इन्होंने 17 फिल्में बनाई, 17 फिल्म्स इन हिज करियर. 17 फिल्म्स में से 16 फिल्म का टाइटल ए से शुरू होता है. जी हाँ, ए से शुरू होता है. समथिंग सिमिलर टू व्हाट जे ओम प्रकाश डिड, इजन इट? मैनी ऑफ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टार्ट विद के फिल्म्स, जैसे कि राजेश राजेश रोशन फिल्म फैमिली, दैट इज ऑफकोर्स आई विल गो इन टू द ऋतिक रोशन फैमिली तो ज्यादा हो जाएगा. ओके, मोहन कुमार पे आते हैं. 1961 में आस का पंछी स्टार्टिंग विद ए, 1962 में अनपढ़ स्टार्टिंग विद ए, 1964 में आई मिलन की बेला स्टार्टिंग विद ए, 1964 में आपकी परछाइयां, 1967 में अमन, ऑल दीज फिल्म स्टार्ट विद ए, 1969 में अनजाना, 1971 में आप आए बहार आई, 1972 में यही एक फिल्म थी जो ए से शुरू नहीं हुई एंड द टाइटल वॉज मोम की गुड़िया. उसके बाद सारी फिल्में वापस ए से, 1974 में अमीर गरीब, 1976 में आप बीती, 1979 में आतिश, एंड दूसरी फिल्में कौन सी थी, आतिश के बाद थी थी ये लिखा हुआ मैंने, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है। 1980 में आप तो ऐसे ना थे, 1983 में अवतार, 1984 में ऑल राउंडर, एंड देन 1986 में अमृत फिल्म में सिर्फ स्टोरी लिखी थी, इन्होंने प्रोड्यूस नहीं की, इन्होंने डायरेक्ट नहीं की, लेकिन अमृत की स्टोरी भी इन्होंने लिखी। मैं चेक करूँगा इफ इट गॉट मल्टीपल अवार्ड्स दैट फिल्म अमृत, लेकिन स्टोरी इन्होंने लिखी। आई थिंक इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई हिम थ्रू MK Films, EMKAY Films was his production house, and 1990 में that was the last film as director with Anil Kapoor and Meenakshi Seshadri and Shabana Azmi, film Amba 1990 की। फिर एक फिल्म में एक्टिंग किया, दो हंसों का जोड़ा, एज ओनली एक्टर, एंड लास्ट फिल्म वॉज आजमाइश, विच वॉज ही प्रोड्यूस्ड एंड डिड द स्क्रीन प्ले फॉर आजमाइश। आपने आजमाइश का गाना जो सुना, सोनू निगम और बेला का गाया हुआ मेरा दिल खो गया वो। सो इन द नेक्स्ट आवर वी शैल कंटिन्यू ऑल द फिल्म्स बिगिनिंग विद ए एंड मोम की गुड़िया, सब गाने उनकी फिल्मों के, जिसमें से 9 फिल्मों में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, 3 फिल्मों में शंकर जयकिशन का, 2 फिल्मों में मदन मोहन का संगीत था, एंड देन एंड सम मोर, दिस इज लाइक कौन, रविंद्र जैन थे एक फिल्म का जो म्यूजिक दिया था, दूसरी फिल्म का म्यूजिक था उषा खन्ना का, आप तो ऐसे न थे, यू नो इट। एनी वे जुड़े रहिएगा एंड यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन लिसनिंग टू ऑल द सॉन्ग्स ऑफ मोहन कुमार।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, we're going to check the rate. Your £1 in British sterling can get you up to £128.25. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. Ab to beginning hai, तीसरा दिन जून का, सो पूरा महीना है आपके आगे, अंटिल बिफोर एंड ऑफ जून, एंड बी इन टू विन ए £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000, ऑल्सो ए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Every morning a shopkeeper opens his doors.
6: Lights on, shutters up, staff ready.
5: But today's customers don't start on the high street.
6: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
5: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
6: They walk into your competitors.
5: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
10: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
9: So where do we find something like that now?
10: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
11: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
12: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24
16: hour line. London, good news! आपका फेवरेट आईटेक अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24A. Once you visit, you come again and again.
17: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
18: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
19: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: तो कोई और।
1: 0208-514-5400. That's the number you got to remember. And tickets available at eventbrite.co.uk. Crazy for Kishore. And Thursday ko interview hone wala hai. The man who's organizing the show, Suresh ji, is going to come personally to the studio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3432, Indian rupees 128.59, Pakistani rupees 373.88, Afghan Afghanis 83.99, and Kenyan shillings 173.78.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £106.65 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड अक्रॉस ग्रेटर लंदन.
6: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
7: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com. कॉल 07932-623852.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
9: in Dubai.
11: The voice that touches every soul.
12: Yeah,
11: Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
15: Then come to Godfather & Company, Vivek House, Bar & Kitchen.
14: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
15: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
14: Friends, family ya special night out, make it memorable.
15: Godfather & Company, taste the legacy, live the moment.
14: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
15: Book your table today.
0: herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
19: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
18: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
20: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
21: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.
22: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travellers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

एन दत्ता का संगीत और साहिर लुधियानवी की लिरिक्स, क्या गाना है ना फिल्म धर्मपुत्र का, रेयरली प्लेड। और ये हेमंता ने गाया बिन बादल बरसात का गाना, जिंदगी कितनी खूबसूरत है।

0: हरमंदा ने गाया, कंपोज भी किया। गाना लिखा शकील बादायूनी ने, बिन बादल बरसात 1963। स्टिल एवरग्रीन सॉन्ग ऑन लाइक अ गोल्ड। अब सुनिएगा मेहंदी हसन साहब को। मेहंदी हसन साहब ने क्या गाया। जिंदगी कितनी खूबसूरत है वो तो बात सही है, लेकिन जब कोई प्यार से बुलाएगा,
1: जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
0: Hey Jazz, this is for you।

मेहदी हसन साहब का गाना ये नदीम भाईजान, नदीम ऑफ नदीम श्रवण, इन्होंने भी गाया हुआ है एक वर्जन। एंड ये गाना हम ऑल्सो टू साइमन यूसुफ बिसाइड्स ए जैज, होप यू लाइक इट। Don't forget, next hour you'll be listening to all songs of Mohan Kumar films, beginning with A except one.

0: कितने खूबसूरत गाने हैं, लेकिन इन गानों के पीछे एक इंसान, मोहन कुमार। मोहन कुमार ने 32 साल काम किया, आई थिंक इट वॉज फ्रॉम 1960 टू 1992। इन्होंने जो फिल्में बनाई, 17 फिल्में, उनमें से 16 फिल्में टाइटल स्टार्टेड विद द लेटर ए। आपने दो गाने सुने, आस का पंछी और अनपढ़। आस का पंछी वॉज हिज डेब्यू डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की थी। अभी 17 फिल्मों में से इन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी 11 फिल्में, और सिर्फ प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट नहीं की थी 3 फिल्में, और सिर्फ डायरेक्ट की थी 3 फिल्में जिसमें प्रोड्यूस नहीं की थी। ही हैड को रिटन द स्टोरी ऑफ फिल्म्स इन 4 ऑफ द फिल्म्स आउट ऑफ द 17, एंड ही हैड ऑल्सो रिटन अ स्टोरी ऑन हिज ओन विच वॉज फिल्म कौन सी थी, अमृत। He had written the story of that particular film, which was a super duper hit film of Rajesh Khanna, and he also did screenplay for 2 films out of the 17. Abhi ye sab number game main bata raha hu aapko, lekin in filmon mein se 9 filmon ka music diya tha Lakshmikant Pyarelal ne, 3 filmon ka music diya tha Shankar Jaikishan ne. Jaise ki pehla gana aapne jab suna, Aas Ka Panchi, सुबीर सेन ने गाया था। दिस इज फॉर विजय गोडोरी हु रिमेंबर्स, ही सेड इट्स नॉट हेमंत कुमार, इट्स सुबीर सेन। एक बार मैंने बोला था, उनको याद है। आस का पंछी 1962 में आपकी नजरों ने समझा जो गाना आपने लता मंगेशकर का सुना, फिल्म अनपढ़ स्टार्टिंग विद ए, एंड उसका म्यूजिक ऑफ कोर्स मदन मोहन जी ने किया था। मदन मोहन जी ने दो फिल्मों में म्यूजिक दिया था इनकी 17 फिल्मों में से 16 फिल्में स्टार्ट्स विद द लेटर ए, एंड 1 फिल्म मोम की गुड़िया, दैट वाज द ओनली फिल्म नॉट स्टार्टिंग विद द लेटर ए। वी आर रिमेंबरिंग द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, जिन्होंने 32 साल में इन्होंने 17 फिल्में बनाई और एक फिल्म में एक्टिंग भी किया। आप एक फिल्म देखोगे, दो हंसों का जोड़ा, उसमें ही वो सिर्फ एक एक्टर थे विद अनुपम खेर उसमें थी, और दूसरा कौन था उस फिल्म के अंदर, किरण कुमार भी थे। यस, यू गॉट टू सी द फिल्म टू अप्रिशिएट हिम। वी आर टॉकिंग अबाउट मोहन कुमार, द ग्रेट मैन हु मेड सम हिट फिल्म्स। द नेक्स्ट वन इज आई मिलन की बेला, उसके बाद आपकी परछाइयाँ, फिर उसके बाद अमन, फिर अनजाना, आप आए बहार आई, और फिर मोम की गुड़िया का गाना मैं सुनाऊंगा। सुनते जाइए, मैं हूं बाली ब्रह्मभट आपकी खिदमत में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you £128.25 Indian rupees. I better repeat that. Your £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono. I think the app is so popular, SBI Yono app. People are always sending money through that app and through SBI branches as well. Now, if you send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day, and when you send over £1,000, that is, also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe Tamara Najikna Asian Shops ma.
1: herald new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Hi, hello, okay, show mucho, kirti, dawayana, ashuntego, arara, public demand. Hariti ami rechu, London maru nau natak line, Patni Premier League, it like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
7: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
10: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
10: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
14: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
15: London, good news! Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridge Way, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
17: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com. Feel good track.
18: brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: रख लेना।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, राजेश खन्ना और शबाना आजमी, एंड उसमें सुजीत कुमार भी थे, एंड दैट वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय मोहन कुमार, एंड दैट वाज अ मासिव ब्लॉकबस्टर अवतार फिल्म। The next song, Ameer Ghareeb, that was also a beautiful film. Sunte jaiyega, we are remembering Mohan Kumar, produced and directed by him.
2: This is Like a Gold, non-stop classics.
1: Itni khoobsurti se Kishor Da ne ye gana gaya hai, bahut feelings ke saath. Main aaya hoon. अमीर गरीब 1974 की फिल्म, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड रिटन बाय के ए नारायण। द फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय मोहन कुमार। देवानंद थे, हेमा मालिनी जी थी, रंजीत, सुजीत कुमार, ये सब थे इस फिल्म में। सुनिएगा। एक्शन और ड्रामा, इट वॉज अ हिट फिल्म अमीर गरीब, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय मोहन कुमार एंड ऑल्सो को रिटन। स्टोरी जो फिल्म की थी अमीर गरीब की, इट वॉज को रिटन बाय मोहन कुमार।

0: Wow, wow, wow. I enjoyed those songs, did you? अब होता क्या है कि I get messages saying I love your choice. I mean, I love the way you present the show. But the whole point is कि अभी मोहन कुमार की फिल्में देखो. Now, 17-18 फिल्में जो हैं. अब इन फिल्मों में हर एक फिल्म में 6 गाने होते हैं या 5 गाने, 6 गाने एवरेज. अब उनमें से कौन सा गाना चुन के आपके सामने लाया जाए, ये बात हम ये काम हमारा होता है. सो व्हेन यू अप्रिशिएट इट, आई एन्जॉय इट बिकॉज आई मस्ट हैव चोजन द करेक्ट सॉन्ग्स फ्रॉम ईच फिल्म टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. ये काम थोड़ा बैठ के करना पड़ता है, टू सिलेक्ट एंड क्या बोलना, एंड देन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूजिक डायरेक्टर्स, द लिरिक राइटर्स. लोग पता नहीं लिरिक राइटर्स को मेंशन ही नहीं करते कभी भी, हालांकि हर एक जो गाना होता है वो लिरिक राइटर से ही पैदा होता है. वो जब अल्फाज लिखते हैं तो उसके ऊपर तर्ज बनाई जाती है, कभी कभी तर्ज बनाई जाती है तो उसके ऊपर लिरिक्स बनाए जाते हैं, वन वे और द अदर. बट द कंपोजर एंड द लिरिक राइटर गिव बर्थ टू अ सॉन्ग, एंड व्हाट वी डू इज वी मेंशन द हीरोज नेम, वी मेंशन द सिंगर्स नेम, बट वी डू नॉट मेंशन द पीपल दैट गिव बर्थ टू अ सॉन्ग. कितना पागलपन है, ये दुनिया बदल चुकी है. बिकॉज एक ज़माने में हम शुरुआत करते थे और बताते थे कि किसका संगीत है और किसकी लिरिक्स थी. वो परंपरा मैं जारी रखता हूँ बिकॉज इसमें अक्लमंद की का बात है, क्योंकि इट इज़ जस्ट सो सिली जस्ट टू रीड आउट एंड से इस फिल्म में ये हीरो थी, ये हीरो था, ये हीरोइन थी. लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि फिल्म किसने प्रोड्यूस की, किसने डायरेक्ट की. ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर तो पैसा भी बनाता है और लूज भी करता है, लेकिन उन्होंने ये फिल्म हमारे सामने पैसा डालकर बनाई और बनवाई, तो उनका भी नाम तो होना चाहिए. जैसे कि आज मोहन कुमार का नाम है, और फिर जो लिरिक राइटर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए, तब एक रेडियो स्टेशन बनता है और एक प्रेजेंटर बनता है. लेकिन सबकी सोच अलग अलग, सब अपने अपने ख्यालों में होते हैं, अपनी अदा से करते हैं. मैं अपनी अदा से करता हूँ. सो थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस एंड योर अप्रिसिएशन. तब हमें ऐसे मालूम होता है कि पीपल डू लाइक द वे वी गिव इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स. शॉर्टकट मानना तो बहुत आसान बात है, लेकिन आई एम ग्लैड दैट आई वर्क हार्ड ऑन इट एंड इट्स अप्रिशिएटेड, सो आई शैल कीप वर्किंग हार्ड ऑन इट. थैंक यू वेरी मच.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to £128.25. 128.25 Indian rupees. Why do I keep doing that? Your £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Yes, £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply. So once again, your £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड.
2: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you. Gemin. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
1: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
10: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
11: Then come to Godfather and Company, Vivek House, Bar and Kitchen.
10: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala to biryani, fresh breads and refreshing drinks.
11: Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
10: Friends, family ya special night out, make it memorable.
11: Godfather and Company, taste the legacy, live the moment.
10: Visit Vivek House, Watford. Call 073-00-99-8823.
11: Book your table today.
12: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
10: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
12: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
10: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
12: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
10: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
12: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
10: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
13: ખાખરા ક્રંચ, ભાખરી મંચ, ચિક્કી સ્વીટ, પાપડ બીટ, પિકલ્સ હીટ, યે હે જયમિન ફૂડ્સ કા વાઇબ ચેક.
14: એડ દેસી તડકા ટુ યોર routine with Jaimin food ke variety of snacks, khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
13: Jaimin Foods Desi Cravings, available at nearest ethnic grocery stores.
15: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
16: Like a gold. London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: What is more important is to know artist of the week here, and that is Indivar ji, Shyamlal Babu Rai. The most, you say, underrated lyricist, jinhone itne अच्छे अच्छे गाने लिखे, जैसे कि ये मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा।

0: शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष और इसका संगीत श्यामल मित्रा, कितना खूबसूरत संगीत दिया इन्होंने। होप यू एंजॉयड।
1: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price
2: at all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.

0: का छल्ला निशान।
1: Some people ask, छल्ला क्या होता है? छल्ला is a ring, a Punjabi word that primarily translates to a ring, a plain metal band, you know, mundri.
2: Bali Brumbutt on Gold Afternoons. Like a
1: gold. And this is the last song of Mohan Kumar. पिछला गाना था अनजाना स्टार्टिंग विद ए और ये है आप आए बहार आई। ये भी फिल्म मोहन कुमार जी की, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। अब आएंगे, मैंने पहले ही बताया था, सैंडी शाह, यस, विद ड्राइव टाइम विद हिज वंडरफुल वॉइस एंड इंफॉर्मेशन एंड सॉन्ग्स एंड राज बद्दन ऑन लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स। कल तक के लिए बाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार, इजाजत।
0: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे

0: विद सैंडी शाह ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: राम कृष्ण हरी UK तयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4 5JJ 100 ढोल 80 ताशे मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या महाराष्ट्राची परंपरा संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org जय हरी विठ्ठल
3: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
4: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
5: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
7: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Our line.
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
11: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
12: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao. આપના પરિવાર સાથે જ્યાં મળશે શાંતિ ભક્તિ અને આનંદ અને સાથે આઈફિલ ટાવર સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ કોલ કરો 0203-773-6333 મંત્રા હોલિડેઝ વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા
0: લાઈક અ રેડિયો નેટવર્ક પ્રાઉડ હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર રાગસાન Gold Drive with Sandy Shah. This is the Leica Radio Network. You heard.
13: The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: For £1, you'll get 128.25 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. आ गए मेरे सारे के सारे बंदर. हैं जी, वेंसडे काम अब निपटा के आ गए, शाम हो गई, खाना वाना खा लिया, गार्डन में बैठ के अब ये शो सुन रहे हैं. बिल्कुल एंजॉय कीजिए. इट्स अ फील गुड वेंसडे. और फील गुड वेंसडे पे होता है क्या, और धीरे धीरे धीरे धीरे हम पहुंचते हैं वीकेंड के करीब. तो ये दो दिन इधर और दो दिन उधर, दैट इज मिड वीक, माय फेवरेट डे. अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो चुका है. एंड पूछूं आप सबसे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना, होंगे ही, क्योंकि आप सभी का रिलैक्स चिलैक्स थोड़ा फन टाइम, थोड़ा कुछ सोचने विचार करने पे जो मजबूर कर देता है वो वाला शो आ गया है. हाय राम, आज ये लड़की क्या करवाई है ना. आप लोग जब मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, तुम तो शांति से बस बैठने ही मत दो हमको, है ना कुछ तो काम करवाते रहो, क्या करूँ, है ना, ये शो भी तो ऐसा है ना. चलो तो आज का काम रैंडम सा सवाल, एंड आई नो ये वाला आप लोग ये कहाँ से ढूंढ के लाती है, बस ऐसी लेके आती. सो हम सभी एशियन लोग ग्रॉसरी स्टोर, ये अनटिल एंड अनलेस अगर हम अपनी फेवरेट चीज़ कुछ ना लाएं तो हमारे लिए ग्रॉसरी स्टोर का जो चक्कर होता है ना, जो शॉपिंग होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती. तो ग्रॉसरी स्टोर का आपका सबसे फेवरेट सेक्शन कौन सा है? फॉर मी फर्स्ट इज अगरबत्ती, सेकेंड जहाँ पे सेवरीज रखी होती है, मतलब सेवरीज उठाती तो हूँ मैं भी वहाँ से पैकेट्स, अगरबत्ती वाला सेक्शन इज माई फेवरेट सेक्शन. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उस सेक्शन में पहुँचती हूँ फटाफट. अभी देखो ये रैंडम भी है, लेकिन हर कोई, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू ग्रॉसरी स्टोर्स. असाइनमेंट समझ में आ गया? चलिए, मन्ना डे जी और आशा भोसले जी कुछ कहना चाह रहे हैं सीता गीता से.

साथ मिला लेते हैं, घड़ियां देखते हैं, टाइम कितना है, इट्स 34 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी, दिस इज लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मैसेजेस आ रहे हैं जी, अब हमारे जो साइलेंट लिसनर्स हैं जरा उनको भी याद दिला दे, कर दीजिए मैसेज, सुन रहे हैं ना आप, मुस्कुराते रहते हैं जब मैं कहती हूँ साइलेंट लिसनर्स तो कितने प्यार से मुस्कुराते हैं। तो भाई सभी लोग जो हैं अपने अपने फेवरेट सेक्शन ऑफ ग्रॉसरी शॉप मुझे लिख के भेज रहे हैं, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी इतने स्पोर्टी है ना, बिल्कुल फटाफट जब मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ, क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसका जो जवाब है आप लोग उसका उत्तर मुझे ज़रूर भेजते रहते हैं। तो बता रहे हैं सब लोग अपने अपनी जो स्पेशलिटी है कि घर से कैसे लिस्ट मिलती है, और जब लिस्ट में से एक आधे एक आइटम अगर रह जाए तो उस पर कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। जी हाँ, फैमिली वाला शो है तो फैमिली की बातें होती रहती ना यहाँ पे, तो उसमें खाना पीना आया, ग्रॉसरी स्टोर भी आ गया है ना। और आप लोग पूछते हैं मेरे हाल चाल कैसे हैं, और फिर जो है वहाँ से पकोड़े, समोसे, कचौरी, और कुछ लोग हेल्दी फूड के फोटोज़ लेके भेजते हैं। तो हाँ, आज मैं भी अच्छा खासा हेल्दी हेल्दी फूड खा के आई, तो मैंने बनाई थी चना चाट। ओके, तो द इजीएस्ट वे फॉर मी इज़ आई डोंट मेक आलू टिक्की, आई जस्ट गेट हैश ब्राउन, हैश ब्राउन को एयर फ्राई कर लीजिए, चने की जो चाट अपने जो छोले बनाए होते हैं चना जिसे कहते हैं, बस उसमें वो हैश ब्राउन मिक्स कर लीजिए, तीन प्रकार की चटनियाँ, प्याज, सेवरीज उसके ऊपर, बस हल्का फुल्का धनिया, एंड आपकी चना चाट इज रेडी। ईजिएस्ट वे, वर्क स्मार्ट है ना, कहाँ इतने आलू बॉयल करके कब तो बनाएंगे वो टिक्की और कब सबको खिलाएंगे।

0: मिला लेंगे घड़ियां। एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ, इट्स 43 मिनट्स पास 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। अब ये जो खबर है ये वायरल भी हो रखी है और थोड़ा सा सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं लोग कि यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है। सो एक फोटो देखा गया है जहाँ पे एक फास्ट फूड किचन में एक आदमी जो है उसके पैरों में चेन लगी है। अब रीज़न क्यों, क्योंकि ये आदमी हर बार अपना जो काम की जगह है, जो स्टेशन है, वो छोड़ के आसपास के लोगों के साथ में जाके गप्पे मारता है। एंड जो यहाँ की दिस इज एक्चुअली, मतलब मैं हंस रही हूँ इस चीज़ को, बिकॉज वो फोटो देख के मुझे इतनी हंसी आ रही है। जैसे बच्चों को होता है ना, या फिर पेट्स को, बच्चे कहाँ भाई, पेट्स को, कई बार पेट्स को लोग चेन लगा के लगा रख देते हैं कि नहीं अब यहाँ से मूव मत करना। सो अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि भाई ये तो एक अब्यूज़ है अपने पावर का, वाइल सम अदर्स आर सेइंग कि मैनेजर डिड व्हाट नीडेड टू बी डन। ओके, बिकॉज ये इंसान जो ये हर टाइम पे अपना काम छोड़ के दूसरों की जगह पे जाके खड़ा होता था। अभी आप सोचिए इसके बारे में कि क्या किया जाए ऐसे लोग जो अपना काम छोड़ के दूसरों से जाके गप्पे मारते रहते हैं। आई एम श्योर ऑफिस में तो ये माहौल बहुत कॉमन होगा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: ધાર્મિક આસ્થા અને ભક્તિ સાથે જોડાવાનો સુંદર અવસર માં કૃપા ફાઉન્ડેશન યુકે લઈને આવી રહ્યું છે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ 7 જૂન થી 13 જૂન 2026 સુધી રોજ બપોરે 3 વાગ્યા થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી કથા વાચન કરશે શ્રી વિપુલ કૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી જુનાગઢ વાળા વેન્યુ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 2 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલી HA4 0JS રોજ સાંજે 6 વાગ્યા પછી પ્રસાદ ની વ્યવસ્થા રહેશે ડોનેશન અને વધુ માહિતી માટે કોન્ટેક્ટ કરો રશ્મિશા 0777-228-7509.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
8: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
8: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
9: वॉटफर्ड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
10: देन कम टू गॉडफादर एंड कंपनी, विवेक हाउस, बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला टू बिरयानी, फ्रेश ब्रेड्स एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स।
10: हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, मेक इट मेमोरेबल।
10: गॉडफादर एंड कंपनी, टेस्ट द लेगेसी, लिव द मोमेंट।
9: विजिट विवेक हाउस वॉटफर्ड, कॉल 0730099823।
10: बुक योर टेबल टुडे।
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
11: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away.
14: extend money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: Yeah, hai Leica Gold.
16: Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.48 Indian rupee, 373.41 Pakistani rupee, 448.31 Sri Lankan rupee, 164.7 Bangladeshi taka, 84.24 Afghan Afghani, 173.64 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
16: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £106.49 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है एक बार जरा टाइम चेक हो जाए. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 7, 7:50, 3rd ऑफ जून, वेंसडे, मिड वीक, फील गुड वेंसडे की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं. यादों की बारात में आपको 50s का एक गीत सुनाया और अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले काली पलक तेरी.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on the evening show.
17: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
18: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
17: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
18: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
17: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
19: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून, वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर. फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए. रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ, फॉलोड बाय महाप्रसाद. आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर करें. वेन्यू, टेंपल ग्राउंड्स, वुडलेन स्टैनमोर, HA74LF. फॉर मोर डिटेल्स, somyagna.com. कॉल 0793262 3852.
20: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
21: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
20: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
21: गारंटेड.
20: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं, तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
21: फोन 0208574 8410.
20: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
22: Search is changing.
23: Customers aren't just using Google anymore.
22: They're asking AI.
23: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
22: One business, one recommendation.
23: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
22: Will your business be the answer?
23: Or the one that got left behind?
22: The future of search has already started.
23: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
22: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Laika Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money.

0: is Leica.
1: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मिड वीक आके पहुंच गए, है ना। मंडे ट्यूसडे कैसा रहा? सब ठीक था? कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, कोई आसपास नहीं है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, रोना धोना हो रहा है, रैंट बड़बड़ जो भी है बताना है एकदम शॉर्ट में। हाँ, दुख दर्द पीड़ा बहुत लंबा ना खींचे। आई एम हियर टू लिसन टू यू। इफ़ यू वांट मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिए। होता है कई बार हमें लगता है कि हमारे मन की बात, हमारे दिल की बात कोई सुने, कोई समझे, है ना। और हर टाइम पर चीज़ों को ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। एज आई ऑलवेज से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, हम ही उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। रहने दो ना, सिंपल हैं चीज़ें, रहने दो सिंपल, अच्छी सादी। सो जून महीना आ चुका है, मिड ईयर हम आ गए। तो जो आपने टारगेट्स बनाए थे, गोल्स बनाए थे, क्या उस डायरेक्शन में काम शुरू कर दिया या नहीं किया? अभी भी नहीं किया तो जागो मोहन प्यारे जागो। भाई जो भी आपका नाम है, बस वो नाम लगा लीजिए। मेरी तरफ से इतना ही कहना है कि ज़िंदगी में हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ ऐसे तड़के लगाते रहते हैं कि रोज़ सुबह उठने के बाद यार आज ये काम करना है, इस महीने में ये गोल अचीव करना है, है ना। उत्साह ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। जी हाँ, अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में बहुत बार, पर उस डाउनफॉल से डरिए नहीं। ग्राफ ऊपर नीचे रहेगा तभी तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। कोई कहानी, कोई लेक्चर, कोई ज्ञान नहीं, बस सहज आपसे बात करने की इच्छा हुई तो मैंने आपसे ये बात की।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: 1 pound in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pounds voucher every day when you send over 1000 pounds. Also 1 gram of gold coin every week when you sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: Extra podcast update.
1: Episode number 18 is out, Menopause, which is hosted by Ruby Raza. Our hot flush is still a hush-hush in our community. Support that loved ones can give our moms, sisters, wives during the times. Like our extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
0: Like Extra is here. This is Ashwini, in for Anisa Nazir on The Evening Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: Hi, hello, okay, show, who took Kirti, the way that Ashu they do, public demand, Hariti Avirichu, London Marana, Nataklaine, Patni Premier League, it's like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July, wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows, Yaad Rakhjo.
5: Patni Premier League, shows at Risleaf, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
9: Leica Gold.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.52 Indian rupee, 373.61 Pakistani rupee, 448.37 Sri Lankan rupee, 164.72 Bangladeshi taka, 83.84 Afghan Afghani, 173.69 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
10: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £106.49 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है Leica Gold रेडियो इन लंदन एंड Leica रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका हमारा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक. कभी कोई अटपटा क्वेश्चन, रैंडम सा क्वेश्चन, कभी बहुत विचार करने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन, उससे शुरुआत होती है हमारे शो की. धीरे धीरे टिक टिक टिक टिक करते हुए घड़ियां में याद दिलाते रहते कि आगे बढ़ना है ना। जिंदगी में आगे बढ़ना वही तो इम्पोर्टेंट है। तो भाई नेक्स्ट आवर में कव्वाली या गजल आज क्या सुनाने वाली हूँ, चलो अभी से बताना शुरू कर दो। आ गया ना पैटर्न तो समझ में आ गया आप लोगों को, अभी कल मैंने क्या सुनाया था याद कीजिए और आज मैं क्या सुनाने वाली हूँ ज़रा अंदाजे लगाते चलिए। इस आवर का आखिरी ट्रैक जो आपको सुनाने वाली हूँ प्रेम रोग फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1982, उस फिल्म से सुरेश वाडकर की आवाज़ में मैं हूँ प्रेम रोगी। आय हाय क्या बात है, 80s के गीतों का एक अपना ही नशा था है ना उस टाइम पे, एंड रेडियो पे ही ये सारे गीत सुने थे तो इस वजह से इसकी यादें हमारे जहन में बहुत स्पेशल होती है। कैसेट्स वगैरह लेके आओ वो तो 90s में हुआ काफ़ी शायद, पर हर जगह रेडियो ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, जैसे कि ये रेडियो एंड दिस शो इज डूइंग फॉर यू।
0: दिस इज लाइका, दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो।
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me.
12: Southall Travel, at all protected.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
16: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
17: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
19: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
20: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए, लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
21: द इवनिंग शो विद अश्विनी,
0: non-stop classics. Like a gold.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे आपका और मेरा साथ रहता है शाम 7 से 10 बजे तक. मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 16 मिनट्स पास 9, 9:16. थर्ड ऑफ जून का ये आखिरी शो इस दिन का. फिर हमारी गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस शुरू हो जाती है. रात में नींद नहीं आ रही, काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जरूर हमारी गोल्ड नाइट्स को सुनिए. साथ ही लाइका रेडियो 90s के बच्चों के लिए या जिन्हें 90s के गीत बहुत पसंद थे, लाइका रेडियो पंजाबी. पंजाबी गीत पसंद करते हैं जरूर ट्यून इन करिए, सुनिए. एंड लाइका गोल्ड 2, बहुत सारी वेरिएशन आप सबके मनोरंजन के लिए. इस आवर का आगाज हमने किया था आशा भोसले अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, जरा सा झूम लूं मैं. किशोर कुमार की आवाज में कर्ज से माय फेवरेट ट्रैक एक हसीना थी, दिस वाज द सेकंड ट्रैक. आगे चलेंगे, नेक्स्ट ट्रैक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मोहम्मद रफी की आवाज में हसीना मान जाइए इस फिल्म से, ओ दिल पर जानिए.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Laika Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128.25 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: इतना फास्ट और एनर्जेटिक ट्रैक था, हसीना मान जाएगी, वाज एटलीस्ट इन 1968 मोहम्मद रफी की आवाज में ओ दिल भर जानी है। शुरुआत कितनी ऐसे लगता ना कि स्लो गाना, ओ दिल भर जानी है, एंड उसके बाद में जो टेक ऑफ होता है रनवे पे, जो प्लेन दौड़ता है। थैंक यू, बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने मुझे ये गीत डेडिकेट किया है, बिकॉज मैं मुझ में भी इतनी एनर्जी उन्हें फील होती है व्हेन आई प्रेजेंट द शो। फैंटास्टिक। ओके, नाउ लेट मी शेयर दिस समथिंग इंटरेस्टिंग विच आई गॉट टू रीड, एंड ऐसे कैसे होगा कि कुछ इंटरेस्टिंग है और मैं आप सबके साथ में शेयर ना करूँ। वियर्ड थिंग्स पीपल ओनली डू व्हेन दे फील सेफ अराउंड यू, दे लेट यू सी देम डू नथिंग। आलसियों के जैसे ना पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, है ना, मतलब स्पेशली जब नई नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है लोगों में, या नई नई शादी होती है, नए नए पार्टनर्स बनते हैं लोग, तो ऐसे होता है कि आराम से, मतलब पहले तो बड़े एकदम उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्टिफ रहेगा, बड़े स्मार्ट रहेंगे, धीरे धीरे जैसे जान पहचान हो, ऐसे होता है ना, जब फिर प्यार वाला मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसके बाद में देन दे बिकम देमसेल्व्स। कभी कभी कुछ नहीं करेंगे, बस पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, है ना, उसके बाद में दे फॉल अस्लीप अराउंड यू। क्या होता है जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ में हो जहाँ आपको सेफ लगता है उनके साथ में, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू फॉल अस्लीप अराउंड देम, क्योंकि आपको पता है कि अरे ये है मेरे पास ख्याल रखने के लिए, ये संभाल लेंगे, इसमें यहाँ पे मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दे स्टॉप मैनेजिंग देयर अपीयरेंस अराउंड यू, अरे वही ना जो मैंने कहा शुरुआत में कि जब नई नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती तो लोग खुद को कितना स्मार्टली कैरी करते हैं, कपड़े शपड़े, परफ्यूम शर्फ्यूम, बाल बाल, आ पर धीरे धीरे जब वो साथ में रहना शुरू होता है तो एक दूसरे को जो ओरिजिनली लोग रहते हैं, असली रूप नहीं कहूँगी, दैट इज़ डिफरेंट, ओरिजिनली जैसे वो खुद को रखते हैं वैसे ही वो फिर रहते हैं उन लोगों के साथ में। दे डोंट प्रिटेंड, दे बिकम देमसेल्व्स, दे ईट फ्रीली अराउंड, जिन्हें आप चाहते हो, जिनके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हो, सेफ फील कर रहे हो, तो आप फ्रीली खाना स्टार्ट कर लेते हो। वही ना कि अभी कुछ लोग तो पिज्ज़ा भी स्पून और फोक और नाइफ के साथ खाते हैं, वंस यू बिकम कंफर्टेबल हाथ में उठाई चीज़ें खाना शुरू। बहुत सारे लोग जो हैं बड़े पर्टिकुलर होते हैं व्हेन दे आर हैविंग फूड विद द पीपल, जब नई नई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है उसके बाद में तो बस हाथ से कढ़ी चावल, है ना, रोटी सब्जी शुरू हो जाते हैं। देयर वॉइस चेंजेस ऑब्वियसली, बिकॉज अलग अलग इमोशंस दिखने लगते हैं ना जब साथ में रहने लगते हैं। देयर पोस्चर चेंजेस कम्प्लीटली, एकदम बिल्कुल स्टिफ बैठने वाला आदमी या फिर महिलाएं जो बिल्कुल पोस्चर इनका बड़ा स्ट्रेट होता है, उसके बाद में दे बिकम अ बिट लाउजी, स्लाउच भी करके खड़े जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, वैसे ही करेंगे। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील विद दैट पर्सन। दे मेक साउंड्स विदाउट थिंकिंग, कुछ भी ना ऐसे हमिंग करेंगे, बड़बड़ाएंगे, जोर जोर से गीत भी गाएंगे, क्योंकि अब कंफर्टेबल हो गए हैं वो एक दूसरे के साथ में, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं और बताऊंगी। फिलहाल तो हम चलेंगे इस शो को लेकर आगे, क्योंकि आर्टिस्ट ऑफ द वीक आपको सुनाना है। एंड कुछ लोग अभी भी गलत जवाब देते हैं यार, इतने दिनों के बाद में गजल या कव्वाली, तो कई लोगों ने कहा कव्वाली, नहीं जी नहीं, आज होगी गजल। अल्टरनेट ये होता है ना, एक दिन गजल, एक दिन कव्वाली, एक दिन गजल, एक दिन कव्वाली। सो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हम आपको सुना रहे हैं इंदिवर जी के गीत, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, जॉनी मेरा नाम, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, आपको सुना रही हूँ उस फिल्म से आर्टिस्ट ऑफ द वीक, एंड उसके बाद में गजल भी, बहुत बहुत खूबसूरत गजल है। जैसा मैंने कहा, बस अब मध्यम रेंज बोलेंगे ना, रेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, मीडियम रखिए वॉल्यूम को और ज़रूर इन्जॉय कीजिए। दिस इज़ द इवनिंग शो विथ अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? Maybe some Parmahan, the proper one from here in Northern Italy, that's been hand-salted using expert techniques, then dry-cured for 20 months for a more intense, distinctive flavor.
3: We visit the world-famous Emilia-Romagna region of Italy for our finest Parmahan, included in our 3 for £8 deli deal with your Tesco Club card. The quality you need around the corner, because every little helps. Selected larger stores, club card or app required.
1: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show. Like
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
9: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
9: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture. Now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
11: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
12: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
11: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
12: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
11: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
12: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
11: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
12: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
10: લાઈક અ ગોલ્ડ. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Puzzle. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Laika Gold.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ Italy ke through.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Backstage Siblings, first ever UK performance happening on the 9th and 10th of October 2026 at SKLPC Northolt. Get your tickets now at sklpc.com/BSS.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Chahe Europe ho ya duniya ka dusra kona, har trip feel hota hai the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
10: For £1, you'll get 128.71 Indian rupee, 373.6 Pakistani rupee, 448.81 Sri Lankan rupee, 164.68 Bangladeshi taka, 83.80 Afghan Afghani, 173.6 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
11: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply.
12: Laika
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
10: Gold is currently trading at £106.49 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
10: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 45 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक. मिड वीक का शो भी खत्म. कल होगा थ्रिलिंग थर्सडे, देन फैंटास्टिक फ्राइडे, फिर आपकी मेरी छुट्टी. दो दिन की छुट्टी आपकी मेरी कट्टी. फॉरगेट इट. आई नो कभी कभी बहुत रैंडम सी चीज़ें आ जाती हैं बिकॉज वो बचपन की चीज़ रहती है. जी हाँ, आप जाने से पहले हमेशा का छोटा सा रिमाइंडर. प्यार जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें देता है, तो प्यार दो, प्यार लो। और पावर का यूज तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी अपने पावर का यूज तो नहीं करते होंगे। अरे आप इतने फैंटास्टिक फैबुलस म्यूजिकल फैमिली में जुड़े हैं, आप सबके सब इतने प्योर सोल से, तो आई एम श्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। लाइफ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जी हाँ, इस डायलॉग में एक नई और चीज में ऐड कर रही हूँ, आपके आसपास के जो लोग हैं, यू नो कई बार ऐसे होता है कि हम हमारे नियर डियर वन से हम लोग हर्ट होते हैं, तो उनके ऊपर से ना वो लेबल्स निकालिए उन रिश्तों के, बिकॉज वो रिश्ते जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, और तभी आप और हम जो हैं दुखी होते हैं। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी खुशी की है, ज़िंदगी हमारी है, आपकी है, और खुश होने के लिए। ऑन दैट नोट आई से बाय बाय, टेक केयर।
11: दिस इज लाइक अ गोल्ड।

0: Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम। बुक योर टिकट्स नाउ। विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
6: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रेजो हस्बंड जी।
7: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
8: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
10: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter